0: Sonst müssten Sie vielleicht irgendwann mal was tun.
1: मेरे पास वक्त की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, सब तुम्हारे।
2: लेकिन एक चीज की कमी है, तमीज की।
1: कभी ना कभी, कहीं ना कहीं।

ऐसे लोग तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत आएंगे अफसर बेटी, और जानती हो कब तक? जब जब तुम ऊंचाई की तरफ जा रही हो, चल रही हो, ये जो थिएटर की दुनिया है ना, ख्वाबों की दुनिया की तरह बिल्कुल नकली है। ये लोग जब किसी को चाहते हैं ना, तो आसमान की ऊंचाई भी कम मालूम होती है। जीना कहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा